हर मुश्किल समय में कोई ना कोई अच्छा मौका छुपा होता है। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस मौके को पहचान कर उसका सही उपयोग करना चाहिए।

हमें हमेशा अच्छी और सही सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच और मेहनत से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं और असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। तो चलते चलते चलिए आपको सुनवाने जा रहे हैं आए सावन झूम की फिल्म का गीत रफी साहब की आवाज में। और इसी गीत के साथ अब सुरभि भोर सोहानी से लेती है आपसे अनुमति और आपको छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 7:59. ಇವತ್ತಿನ ಭಾವಸ್ಪಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಅವರು. ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭೋದಯ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 7:59:35. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರೇನ್ಬೋಗಳಿಯ ಸಚಿನ್ ಬನವಾಸಿ ಹಾಲ್ಡೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 8:30. ಸದಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಕನ್ನಡ ಕಾಮನ ಪಿಲ್ಲು.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा. भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया. आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित. सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की. मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान. और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. अब समाचार विस्तार से. भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है. 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी. 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी. इसमें 18 जवान शहीद हुए थे. वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी. आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा. आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है. पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी. अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है. इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है.

0: समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
1: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखड़ कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है।

0: रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Thiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the line of control.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
2: The Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to activist Ashok Singhal. In an article for an English daily, Mr. Modi said, Ashok Singhal's life reflected a cherished ethos. The pursuit of others' welfare acquires far greater meaning than individual achievement. Mr. Modi said that starting from yesterday, the nation marks to celebrate the birth centenary of the outstanding personality of Ashok Singhal. The Prime Minister added that Ashok

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: सुप्रभात, स्वागत आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। तो चलिए आज की पहली अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। कुराश में भारतीय जुडोका 2018 एशियाई खेलों के सिल्वर मेडलिस्ट पिंकी बलहारा ने कुराश के महिला 78 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता लिम गारम को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही पिंकी ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। यह एशियाई खेलों के इतिहास में कुराश में भारत का तीसरा पदक होगा।
2: Let's talk about the continuing good news streak from this morning, coming in from a second consecutive win for India in the men's volleyball at the Asian Games. So, after opening their Pool C campaign with a straight sets victory over Vietnam yesterday, the Indian team has continued its winning run today, defeating Hong Kong China by 3-0. So, India took the first set 25-22, followed by win in the second before closing out the match 25-21 in the third. It was another composed performance from the Indian side. Two matches, two wins for India in Pool C. The team's next pool match is against Qatar tomorrow, where we will look forward to maintain our
1: की बात कर लेते हैं। जैसा कल दो पदक स्क्वैश से हमें मिला था, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने चीन को 2-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। निर्णायक मुकाबले में अनुभवी ज्योत्सना चिनप्पा ने चीन की ल्यू जी को लगातार 3 गेम में 12-10, 11-4, 11-6 से शिकस्त दी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था। ऐसे में ज्योत्सना चिनप्पा पर निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और भारत को महत्वपूर्ण जीत दिलाई।
2: Let's have a look at the exciting news coming in from surfing, where Kishore Kumar has booked his place of the men's short boat event. Kishore was in action in the round of 16 against China. Strong performance, edging past his Chinese opponent 9.76 to 8.80. That victory takes Kishore into the last eight and keeps India's hopes alive in surfing. I have to tell you here that he is now the only Indian surfer remaining in the competition, with the quarterfinal stage still to come.
1: शूटिंग से कुछ अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही विदुषी। देखा जाए तो एशियाई खेल 2026 का जो 25 मीटर पिस्टल भारतीय टीम जो गई, महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा की टीम इवेंट में भारत 5वें स्थान पर आ और पदक से चूक गया। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में ईशा सिंह 580 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, और वो एकमात्र भारतीय रही जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने चाइनीज ताइपे की चेंग येन चिंग को इनर 10 के आधार पर 24-22 से पीछे छोड़ा। मनु भाकर 579 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रही और फाइनल में जगह नहीं बना सकी। वहीं राही सरनोबत 568 अंकों के साथ 30वें स्थान पर रही। राही की पहली रैपिड सीरीज में एक ऐसी गलती थी जिसका असर पूरी टीम पर पड़ा और टीम इवेंट में भारत से पदक चूक गया। अगर वहीं पर सीरीज जो उनको अंतिम जो निशाना लगाना था वहां पर वो बेहतर करती, यकीनी तौर पर भारत के लिए कुछ अच्छी खबर आती विदुषी।
2: दैट्स हाउ वी आल्सो टॉक अबाउट सम न्यूज़ दैट वी हैव फ्रॉम वुमेन्स सेपक टकराव, वेयर इंडिया हैव गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। So India fought hard in a closely contested match, but Japan came through 2-1. Japan took the opening set 15-11, but India responded strongly in the second, winning it 15-9 to level the match.

0: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ರವರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ, ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ.
1: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 10:30. ಇದೀಗ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ 2026 ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
2: के जो अब तक के ताजा नतीजे हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा. अभी भी खबर आई, भारत ने मेडल पक्का कर लिया. जी हां, मुक्केबाजी की बात कर रहा हूं मैं. मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिस तरह के वो मुक्केबाज है, धाकड़ मुक्केबाज है, उनका वही खेल देखने को मिला. जी हाँ, ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए महिला 75 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्वेन सेओंग को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हरा दिया है. लवलीना ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा. 3 राउंड में भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में 5-0 का फैसला रहा. इस शानदार जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए एक पदक और पक्का हो गया है मुक्केबाजी में. अब लवलीना की नजरें फाइनल में जगह बनाने की होगी और पदक का रंग भी बदलना चाहेंगी.
3: And now there is big news from cricket as well, with Team India through to the semi-finals of the Asian Games Men's T20 tournament with a bowl without being bowled at all. India's quarter-final against Afghanistan was abandoned without a toss because of a persistent rain. But here is the crucial part of the story. India's higher ICC T20 ranking became the deciding factor. And under the Asian Games tournament regulations, when a quarter-final is washed out without a result, the higher ranked team advances. So India's superior ranking has sent them through to the semi-finals. India will now wait for the winner of the Sri Lanka versus Nepal quarter-final to determine their semi-final opponent.
2: जी बिल्कुल, भारत क्रिकेट का पावर हाउस और क्रिकेट में भारतीय टीम आगे न बढ़े ऐसा हो नहीं सकता. और अपनी रैंकिंग के आधार पर जिस तरह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, उम्मीद करेंगे वहां भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को क्रिकेट में महिलाओं की तरह पुरुषों में गोल्ड हमें देखने को करते हैं. यहां पर स्क्वैश की जहां पर कोर्ट पर शानदार दमखम दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने चीन को एक तरफा अंदाज में मात दे दी. जी हां, पुरुषों के टीम स्पर्धा के पूल ए के मुकाबले में भारत ने चीन को 3-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारत की ओर से सूरज चंद्रवीर इसके अलावा वीर चोटरानी और वेलकल सेंथिल कुमार ने अपने अपने मुकाबले जीत कर शानदार सफलता दिलाई है, यानी शानदार भारतीय खेमे में जीत दिलाई है. पहले मुकाबले में सूरज चंद्र ने चीन के शौकीन डू को कड़े संघर्ष के बाद 11-4, 11-2, 12-10 से हराया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद वीर चोट्रानी ने कोर्ट पर अपना दमखम दिखाया, दबदबा बनाए रखा. उन्होंने हाइजोन ली को लगातार 3 गेम में 11-5, 11-5, 11-3 से हराकर भारत की जो बढ़त थी 2-0 कर दी. और तीसरे मुकाबले में वेलन सेंथिल कुमार ने पोलिंग झोऊ को, जो उनके खिलाफ जो उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, उनके खिलाफ शानदार खेल दिखाया. वेलन ने यहां पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, वेलवन ने यह मुकाबला 11-3, 11-2, 11-4 से जीतकर भारत की झोली में 3-0 के ये जीत दिला दी. इस तरह भारतीय पुरुष टीम ने चीन के खिलाफ तीनों मुकाबले जीतकर क्लीन स्वीप किया और पूल ए में अपने अभियान को और मजबूती दी.
3: Let's now turn our attention to archery and the women's compound individual event, where India had 2 strong contenders in action today and Chikita Taniparthi has saved. So we begin the round of 32 while talking about Jyoti Sureka Venom, who got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. She produced a strong performance to take the match 148 and 145 moving into round of 16. But the next challenge was a tough one. In the round of 16, Jyoti came up against Korea's Kang Yuen-soo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150, which brings her individual campaign to an end here. And now the focus shifts to Chikita Taniparthi, who has given us one of the most dramatic finishes of the day so far. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that context comfortably, winning 149-140. And then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 140. 8. That meant the contest had to be decided by a shoot-off, and Chikita held her nerve when it mattered the most. She survives, she wins the shoot-off, and she is through to the quarterfinals. And the next challenge is already set. Chikita will be back in action in the quarterfinals on October 1st, where she will face Indonesia's Narusha Ashrifa.
2: बात शूटिंग की करते हैं. शूटिंग में भारत के लिए अच्छी खबर है. ट्रैप स्पर्धा में दूसरे दिन के मुकाबले में प्रदर्शन करते हुए महिला क्वालिफिकेशन में पहला स्थान हासिल कर लिया. वहीं भारतीय महिला टीम भी पदक की दौड़ में बनी हुई है. महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन में 4 राउंड और 100 शॉट के बाद नीरू ढांडा 95 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं. भारत की मनीषा किर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत भी 84 अंक के साथ 23वें स्थान पर बनी हुई है. वही टीम की बात करें, टीम स्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर. वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं. पुरुष ट्रैप में शपथ भारद्वाज 95 अंक के लेकर 5वें स्थान पर है. वही काइनन चेन्नई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर. यानी पुरुषों के लिए फिलहाल 5वां स्थान सुनिश्चित है.
3: And now we just have a medal event underway in Karachi, where India's Pinky Balara is on the mat in the women's 78kg semi-final, taking on South Korea's Myo Soo Min.
2: बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ईशा सिंह 25 मीटर पिस्टल में एक्शन में नजर आएंगी. फाइनल मुकाबला खेलेंगी. फिलहाल अब तक की अपडेट में यहीं तक. मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी बस को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
1: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿದಿರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ 2026 ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.

0: shoot off after shoot off. The pressure kept mounting. The margins kept getting finer, but Aisha held her composure and kept her focus right till the very end. A brilliant performance, a brilliant medal, and another moment of pride for the Indian contingent. Shahid, please take us through that incredible contest and Aisha Singh's journey.
1: बिल्कुल विदुषी, बताना चाहूंगा, नर्व्स को बिल्कुल, दिलों की धड़कन को रोक देने वाला मुकाबला था। असली शूटिंग, जबरदस्त शूटिंग देखने को मिली, और ईशा सिंह ने क्या अपने नर्व्स पे काबू रखा था। एक वक्त लग रहा था एलिमिनेट हो जाएंगे, एक वक्त लग रहा तीसरे पर आएंगी, और अंततः तक दूसरे स्थान पर रहती। भारत की स्टार निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। फाइनल में ईशा सिंह और चीन की शाओ जू शुआन के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, और दोनों बार शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा। दूसरे शूट आउट में ईशा आखिरी शॉट नहीं लगा सकी, जिसके बाद चीन की शाओ ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ईशा ने रजत पदक के साथ भारत की निशानेबाजी के जो पोटली है उसमें एक और पदक डाल दिया। इससे पहले के मुकाबले के बारे में बता दूं, वो भी बेहद रोमांचक मुकाबला था के लिए खेला गया। वहां ईशा ने किम हॉन सुंग को 3 शूटआउट के बाद हराया। दूसरे शूटआउट में ईशा 3-2 से आगे थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मैच रोकना पड़ा। उसके बाद तीसरे शूटआउट में ईशा ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में गोल्ड और सिल्वर के लिए मुकाबले में पहुंची। वहां पर जिस तरह से देखा हमने, बहुत टाइट मुकाबला था, ईशा ने सिल्वर मेडल हासिल किया।
0: What a spectacular display of sport that was, you know, the immense pressure, margins, my God. It was truly a sight of delight. And that wonderful performance in shooting fresh in our mind. Let's also tell you about another medal for India from the Kurash Arena, where Pinky Bulhara secured bronze in the women's under 78 kilogram category. She was in action in the semi-final today against South Korea's Moo Soo-min, and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated Lim Garam 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing a medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is the only India's third ever Asian Games medal in this sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at the 2018 Asian Games, while at the 22 ones her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. And it is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash Arena.
1: बिल्कुल, मुक्केबाजी से भी सुबह अच्छी खबर आई। जैसा कि कल हमने देखा, 3 भारतीय मुक्केबाज उन्होंने फाइनल में, सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का कर लिया। हालांकि सेमीफाइनल में वो खिलाड़ी जीतते हैं तो पदक का रंग और अच्छा होगा, लेकिन आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, जिनसे उम्मीद भी थी कुछ शानदार प्रदर्शन करेंगी, और अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया। 5-0 से अपना जो मुकाबला था, क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, वहां पर जो दक्षिण कोरिया की मुक्केबाज थी स्वेन सोइंग को हराकर जीत दर्ज कर ली, उन्होंने एक और पदक पक्का कर लिया। हालांकि जिस तरह से शूटिंग में हमने देखा, पदक आया, उसके बाद एक और मेडल आया जैसा विदुषी ने बताया, अब यहां पर मुक्केबाजी से एक और पदक पक्का हो गया। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, शाम तक मुकाबला पहुंचेगा, एशियन गेम्स के मैच खेले जाएंगे, भारत की और स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी।
0: एब्सोल्युटली, इट हैज बीन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉर्निंग फॉर द इंडियन कंटिंजेंट सो फार। एंड व्हाइल वी रैप अप दिस अपडेट, लेट्स गिव यू अ क्वाइट अपडेट फ्रॉम टेनिस एज वेल, वेयर इंडियाज वुमेन्स डबल्स कैंपेन हैज केम टू एन एंड। रुतुजा एंड अंकिता, द 8th सीडेड इंडियन पेयर, फेस्ड कजाकिस्तान इन द फर्स्ट राउंड। इट वॉज रियली क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट। इंडिया टुक द ओपनिंग सेट 7-5, बट कजाकिस्तान फॉट बैक स्ट्रांगली टू टेक द सेकेंड सेट 6-3। दैट मेंट द मैच वेंट इन टू अ डिसाइडिंग मैच टाई ब्रेकर, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, कजाकिस्तान हेल्ड देयर नर्व टू विन 10-5। सो द फाइनल स्कोर रीड्स एज 7-5, 3-6, 5-10। एंड फॉर नाउ, कीप लिसनिंग टू आकाशवाणी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द एशियन गेम्स। दिस इज विदुषी वत्स विद मोहम्मद शाहिद आजमी, एंड वी विल बी बैक विद मोर थ्रिलिंग एक्शन इन आर नेक्स्ट अर्ली अपडेट। थैंक यू।

0: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳಿ ಸಿಐಇಟಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಮಂಗ್ ಅಕ್ಷರ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ.
1: ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 1:29. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
2: ತಾಜಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕಾ
3: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಆಯ್ಚಿ ನಗೋಯಾ.
4: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में. मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स. चलिए आज इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं, स्क्वैश से बात करते हैं, जहां कांटे की टक्कर है. ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. ओमाहिल टीम स्पर्धा के पूल सी मुकाबले में भारत की जापान के बीच रोमांचक टक्कर है. भारत ने जोरदार शुरुआत करते हुए पहला मैच अपने नाम कर लिया, लेकिन जापान ने दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया है. पहले मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा ने जापान की एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-8 रनों से हराकर भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे मैच में अनाहत सिंह और सातुमी वतानबे के बीच जो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला, उसके बाद वहां अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा. अब मुकाबला 1-1 से बराबर पर है. तीसरे मैच पर सभी की निगाहें क्या तन्वी खन्ना जापान की अकारी मिदुरिबकोवा को हरा कर वापसी करती हैं, भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाती हैं. आने वाला कुछ वक्त बता देगा, लेकिन हाँ यकीनन ये मुकाबला बेहद ज़बरदस्त चल रहा है. अनाहत सिंह को जिस तरह यहाँ से शिकस्त मिली है, मुकाबला और ज़्यादा रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुँच गया है.
5: Absolutely. Promising that thrill, they are promising that action that we look forward to when sports come into the play. But what is more promising is that there is plenty more action coming up for India as we move into the second half of the day. The excitement is really building, especially with a packed evening of athletics ahead. Let me give you a little overview of what is coming up for us. So we begin at 2 p.m. with squash, where India takes on South Korea in the men's team event in Pool A. Now

0: After that, we go with boxing, where Priya taking on her quarterfinal in the women's 60 kilogram category. And at 4 p.m., it will be Kapil in action in the men's 90 kilogram category. So there is plenty at the stake in the boxing ring this afternoon. After that is when the athletics program really take off at 2:35, where we have Seema and Sunny in the women's discus throw final, followed by the women's 400 meter hurdles final at 3:53, and where Vithya Ramraj and Anu will be looking to make their mark. After that, we turn our eyes to Santosh Kumar in the men's 400 meter hurdles final, and then comes the men's 3000 meter steeplechase with Avinash on the start list. But the still keeps coming, where we have Murali Sri Shankar and Abdullah Abubakar listed for the men's long jump final at 4:30, followed by Gulveer and Yunus Khan in the men's 1500 meters. We also have Rohit and Yashvir in the men's javelin throw final, and then the women's 800 meter heats at 4:50, featuring Gautami and Pooja. The evening gets even bigger with the women's 5000. Where Parul and Seema will be in action. And then, just when you think the athletic schedule could not get any more exciting, we have the relay events as well. India's men 4x400 meter relay team is scheduled, followed by the women's 4x200 meter relay final as well. So from 2 p.m. onwards, it is going to be a packed sporting afternoon, evening, with squash and boxing leading us into what promises to be a massive athletic session.
1: जैसे ही शाम ढलेगी, वैसे ही देखा जाएगा कि ट्रैक एंड फील्ड पर जबरदस्त जोरदार आजमाइश देखा जाएगा, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. लेकिन हाँ, आज जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी भी बात कर लेते हैं. आज जो मेडल भारत ने जीते उसकी भी बात कर लेते हैं. शूटिंग में बात करेंगे, ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत में रजत पदक जरूर जीता. लेकिन हाँ, क्या मुकाबला था विदुषी, जबरदस्त मुकाबला था. 5 मरतबा शूट आउट तक मुकाबला पहुंचा था, शानदार मुकाबला हमने देखा. वहीं पर कुराश की बात करते हैं, पिंकी बलहारा महिलाओं की 78 किलोग्राम सेम सुमिन से हार जरूर गई, लेकिन इसके बावजूद ने कांस्य पदक हासिल हुआ. बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सोन को हराकर पदक पक्का कर लिया. यानी भारत का जो जीत का सिलसिला वो लगातार आगे बढ़ रहा है.
0: एब्सोल्युटली, इट हैज बीन अ मॉर्निंग फुल ऑफ इंटेंसिटी, कंपोजर एंड सम ट्रूली मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम आवर एथलीट्स. एंड एज वी जस्ट शेयर द स्केड्यूल ऑफ द डे दैट्स अपकमिंग, व्हिच इज प्रॉमिसिंग excitement, a lot of excitement and thrill. With that, we will see you in our next update of the Asian Games. This is Vidushi Vats with Mohammed Shahid Azmi taking your leave right now, but see you real soon. Thank you.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: ಇದುವರೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ.
4: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕೇ? ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಬೇಕೇ? ಬನ್ನಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ದನಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಹಾರೈಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಗೊಂದು ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮ ರೂಪಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ CBS BLR

0: Indian athlete Pinky Balhara secured the bronze medal in the women's under 78 kilogram Kurash event. She won the medal after defeating South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinals. Earlier, the Indian men's cricket team has entered the semi-final without even taking the field after its quarterfinal against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi Nagoya in Japan today. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the center's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes and terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bagged silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram Kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में

0: सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
4: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
3: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
7: सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
8: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
7: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
9: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2,000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2,000, 1,500, 1,200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक निवेश 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में है। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
10: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
11: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्योंग स्योन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच

0: गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी।
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
2: जी।
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया
2: जी।
0: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
2: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
0: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
2: श्रोताओं इसका उत्तर है, थर्मामीटर को हिंदी में ज्वर मापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
0: हमारा अगला प्रश्न था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है?
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है?
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
2: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
2: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की

0: छानबीन कर लेनी चाहिए।
1: एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
2: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
1: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
2: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
1: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
2: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
1: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
2: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
1: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
2: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
1: उसने सोचा,
2: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
1: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
3: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
4: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: सभा में पता चल ही जाएगा।
1: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
2: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
3: भैया कोई खास बात है जरूर।
0: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
3: अच्छा,
0: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
3: हाँ,
0: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
3: अरे भैया कुछ पता नहीं जाने क्या मसला
4: क्या है। ठीक है, बिल्कुल बात भगवान सब
3: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
4: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
5: शोक सूचना?
4: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
1: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
4: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से हैं।
3: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
4: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
6: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
7: कैसे हमारे भाई?
3: बताओ तो
7: थापा जी कैसे हैं?
4: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
3: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
7: कैसे समझा?
4: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
1: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
7: अरे वो हमारा गौरव है,
6: हमारा गौरव है।
1: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर है। मेजर धन सिंह थापा अमर है।
4: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
6: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: जब तक सूरज चांद रहेगा,
8: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
1: भारत माता की
8: जय।
1: भारत माता की
8: जय।
9: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
10: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
9: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है। गांव का नाम है सुरम्य।
10: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
9: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
10: और

0: आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
1: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
2: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
3: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
2: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
3: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
2: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
3: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
2: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने ना पाए।
3: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
2: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है,
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी सहायता दे।
3: पर इनको रोक के रखो।
4: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
4: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
4: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
6: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
7: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
6: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे। कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर।
8: जय मां काली, आया गोरखाली, फायर।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की पट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: माँ, माँ, माँ, माँ देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
4: चिट्ठी, ला दिखा तो।
3: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
5: जिंदा है। अरे बहुत खुशी
6: का बेटा,
5: जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया।

0: देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್.
1: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ರವರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ, ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ.
2: ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 3:30. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳೋಣ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್.
3: 26 ಕಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾ
4: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಆಯ್ಚಿ ನಗೋಯಾ.
5: Welcome back to your Asian Games live update, where the action is coming thick and fast, and India has a reason to celebrate. I am Vidushi Watts with Mohammad Shahid Azmi, bringing you all the latest results, medal moments and big developments from the Asian Games. And what a way to begin this update, where India has confirmed another medal in boxing. Priya has stormed into the semi-finals of the women's 60kg category, and with that semi-final berth, she has guaranteed herself a medal for India. Priya stands Migona Samadova in her quarter-final bout, and she delivered a commanding performance, winning the contest 5-0, a unanimous victory, a place in the last four, and most importantly, another medal is now assured for the Indian contingent. Her semi-final is scheduled for September 30, so there is still another big challenge.
6: स्क्वैश की बात कर लेते हैं. स्क्वैश में भारत कमाल कर रहा है. जापान के खिलाफ पहले बढ़त, फिर बराबरी, फिर आखिरी निर्णायक मुकाबले में शानदार जीत. जी हां, भारत ने स्क्वैश कोर्ट पर दम दिखा दिया है. भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने पूल सी के रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी है. पहले मैच में जोशना चिनप्पा ने एरिसा सानो को सीधे गेमों में 11-8, 11-9 से शिकस्त दी. भारत को यहां 1-0 की बढ़त दिला दी. दूसरे मुकाबले में अनाहत सिंह और सामोती वतानबे के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला. अनाहत को 5 गेम तक चले मुकाबले में 8-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा, और जापान ने यहां पर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया. अब फैसला तीसरे और निर्णायक मैच पर पहुंच गया था. यहां तन्वी खन्ना ने दबाव के बीच शानदार संयम दिखाया और अकारी मुद्रिकोवा को 12-10, 11-9, 10 से शिकस्त देकर भारत को 2-1 से जीत दिला दी. भारत का अब पूल सी में अगला मुकाबला 29 सितंबर को ईरान से खेला जाएगा.
5: Absolutely a strong finish for the Indian women in Pool C. And now let's look at the Indian men, who are on court against the Republic of Korea with their Pool A match currently undergoing right now. So the first match has already been done, which was Vellavan Senthil Kumar, who has already given India the perfect kickstart that was needed. So he defeated Young in straight games 11-6, 11-4, 11-7, which did put India 1-0 up in the team tie. And after that, it was a beautiful dominating game by Abhay Singh, which has just ended. He has scored again a 3-on-3 straight victory. Amazing lead in all the games as 11-4, 11-7 and 11-1. Now in the next match, which is the third one, it's Veer Chotrani against Oh Seo-jin to finally settle us into this straight victory against South Korea. And of course, we will keep you updated as this contest develops.
6: Vidushi, chalte hain athletics ke track par. Wahan mix 400 4x100 meter relay.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की विशेष अपडेट सुई में। ठीक 5:30 हुए हैं, बताते हैं इस घंटे की खास अपडेट। एशियन गेम 2026 में एथलेटिक्स ट्रैक से भारत के लिए एक और शानदार खबर आई है। पुरुषों की 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का परचम लहरा दिया। गुलवीर ने 3:36.72 सेकंड के पर्सनल बेस्ट टाइम के साथ रेस पूरी की। बेहद करीबी मुकाबले में जापान के काजुतो इज़ावा ने 3:36.35 सेकंड से एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि जापान के ही नागिया मोरी ने 3:37.92 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारत के एक और धावक यूनुस शाह 3:43.88 सेकंड के साथ नवे स्थान पर है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और अब गुलवीर सिंह ने उसे सिल्वर मेडल में बदल दिया, यानी पदक का रंग।
2: And now we have another athletics medal update live coming in from the women's 5000 meters final. Parul Chaudhary has done it again. She has won the bronze medal for India in the women's 5000 meters, adding another medal to what has been a remarkable athletics campaign for the country. She has already stand out among many performers from India in the women's 3000 meters steeplechase medal as well. And you know, there was plenty of attention to Seema as well after bringing home the bronze medal in 10,000 meters. Expectations were high, but Parul Chaudhary has done it again. Another medal from athletics.
1: Hockey की बात कर लेते हैं विदुषी। यहाँ पर भारत शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में बांग्लादेश पर पूरी तरह से हावी है। अंतिम जो क्वार्टर है खत्म होने वाला, 5 मिनट का समय बाकी और भारत ने 8-0 की लीड ले रखी है। यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह जो भारत के जबरदस्त डेक विलकर है, उन्होंने कमाल किया है। 27, 40 और 45, ये मैं मिनट बता रहा हूँ, 27वें मिनट में 40वें मिनट में 45वें मिनट में 3 गोल स्कोर किया, लेकिन शुरुआत की थी अभिषेक ने 3 तीसरे मिनट में पहला गोल किया था। युवराज सिंह ने 22वें मिनट में गोल किया था। उसके अलावा बात करें सुखजीत सिंह ने 32वें मिनट में गोल किया। शीनालन लाखलाड़े ने 44वें और 45वें मिनट में लगातार 2 मिनट में 2 गोल स्कोर किया था। अभी इस वक्त भारत 8, बांग्लादेश 0 और खेल खत्म होने में महज 4.5 मिनट का समय बचा है।
2: We also have 2 athletics finals underway with plenty of Indian interest. The men's long jump and the men's javelin throw are happening simultaneously. So let's first take a closer look at the live action happening in the long jump and what difference an attempt can make. Let's begin with Murali Sri Shankar, who began with a 7.66 meter jump, which placed him 5th after the opening round. But he came roaring back with his second attempt, producing a superb 8.07 meters and moving straight up to the second position. That position stayed the same after his third attempt, recording 7.56. And there is movement for David Solomon Patturaj as well. He opened with 7.51 meters, which had him in the sixth position after the first attempt. His second jump measured 7.45 meters and that sees him currently in 7th. The position has remained the same after his third attempt, recording 7.45. Meanwhile, China's Shi Yang has maintained the first position so far while also hitting the season best with 8.17. Meanwhile, Shahid, what's the latest from the men's javelin throw?
1: Bilkul, Rohit Yadav aur Yashveer Singh, in dono khiladiyon ne Neeraj Chopra ki

0: कमी महसूस अब तक नहीं होने दी। रमेश पतिराजे पीछे चल रहे हैं, रोहित यादव पहले स्थान पर हैं 84.35 मीटर दूर भाला फेंक कर, वहीं यशवीर सिंह 83.56 मीटर भाला फेंक कर दूसरे स्थान पर, यानी पहले और दूसरे स्थान पर भारतीय खिलाड़ी हैं। अगले घंटे में क्या घटित होता, कहां जाकर अगले घंटे आपको अपडेट में बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को अगले घंटे के बाद आने के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: अभी आप सुन रहे थे
3: इतवरेगू एशियन गेम्स ना अपडेट्स केळिदिरी।

0: Welcome back to your Asian Games update, where the Indian flag is back on the podium. I'm Vidushi Vats with Mohammad Shahid Azmi, and we have huge athletics update coming in live from the Asian Games. India has won more than 300 athletics medal at the Asian Games, and it is Murali Sri Shankar who has created this landmark moment. Sri Shankar wins silver in the men's long jump, produced a best jump of 8.07 meters to finish with the silver medal, successfully defending the silver medal he won at the previous games. A two-time Commonwealth Games silver medalist once again delivers on this big stage. But this final also had a difficult moment for the Indian star. Sri Shankar had to retire from the competition after suffering an injury during his fourth attempt. Still, that 8.07 meter effort that had already done the job, securing another Asian Games silver. But this is not all. The Indian performance from athletics does not pause here. There is more from medals at this moment that we are excited to share.
1: बिल्कुल, भारत को एक ही इवेंट में दोहरी सफलता मिली, दोहरी खुशी मिली है। मेंस जेवलिन थ्रो में भारत ने शानदार डबल पोडियम फिनिश किया। यशवीर सिंह ने सिल्वर तो रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यशवीर सिंह ने अपने आखिरी प्रयास में 85.72 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। वहीं रोहित यादव का आखिरी प्रयास फाउल जरूर गया, लेकिन उन्होंने 84.35 मीटर का थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने कब्जे में कर लिया। गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल रुमेश पथिराजा ने जीता। उन्होंने आखिरी प्रयास में 88.55 मीटर का थ्रो करके जो शानदार उनका थ्रो था, स्वर्ण पदक दिला गया। हालांकि उन्होंने चौथे अटेम्प्ट में ही 88.33 की दूरी नाप ली थी, वहीं उनका स्वर्ण पदक पक्का हो गया था। लेकिन भारत के लिए यकीनी तौर पर जेवलिन थ्रो में जो उम्मीद की जा रही थी, नीरज चोपड़ा की हालांकि कमी जरूर रही, अगर होते शायद गोल्ड तक जाते, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने दो पदक जीतकर डबल खुशी जरूर दी है विदुषी।
0: एब्सोल्युटली, द एक्शन इज अनफोल्डिंग राइट नाउ, द मेडल्स आर कमिंग इन, रिकॉर्ड्स are being broken, and India is making its presence felt across athletics and boxing as well. To take a quick look at some absolutely amazing headlines we have had in the last hour and a half, Parul Chaudhary does it again, bronze for India in the women's 5000 meters. Vithya Ramraj creates history with a bronze medal and a national record in the women's 400 meter hurdles. She has gone past P.T. Usha's 42-year-old national record. Gulveer Singh adds another silver, and Kapil Pokhriyal storms into the semi-finals of the men's 90 kilo category. One more update is that Pooja has qualified for the women's 800 meter final after finishing 5th in her heat.
1: बिल्कुल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करते हैं, एक तरफा अंदाज में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी, 10-0 से हराया। बता देते किसने किसने गोल किया। हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल स्कोर किया 27वें, 40वें और 45वें मिनट में, लेकिन खाता खोला था अभिषेक ने 3रे मिनट में गोल करके। वहीं सुखजीत सिंह ने 32वें, शिलानंद लाकड़ा ने 44वें और 45वें मिनट में, संजय ने 59वें मिनट में, जबकि जो ताबूत में आखिरी कील था उसे ठोका मनदीप सिंह ने 60वें मिनट में। इस तरह बांग्लादेश को चारों खाने चित करते हुए भारत ने जीत दर्ज कर ली हॉकी मुकाबले में।
0: Absolutely, more fantastic news this hour. As we say, these games are with twists and turns. This one comes from India men's 4x400 meter relay team, which has now headed into the final. The Indian quartet of Dharmveer Chaudhary, Rajesh Ramesh, Manu, and Jay Kumar has stormed into the final. And it's 1.49 seconds in heat 2, and this is the big headline, that is the fastest time across both heats. So India not only qualifies but does it with the quickest time of the entire heats. And right now there is more relay action underway. The women's 4x100 meter relay final has just started. It's just about to take our attention to the track and see how India is doing in this one. India is making its presence felt on the track and the momentum continues.
1: बिल्कुल, उम्मीद करेंगे यहाँ भी भारत को पदक मिले। कुछ लम्हों बाद decide हो जाएगा, फैसला हो जाएगा यहाँ पर किसके खाते में पदक जाता है। फिलहाल हमारा समय समाप्त हो रहा है इस घंटे की अपडेट के लिए। अब मिलेंगे आपसे ठीक 7:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: तो अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की अपडेट। और
4: इदुवरेगू एशियन गेम्स 2026 अपडेट्स ಕೇಳಿದಿರಿ।
5: ಆಯುಷ್ವಾಣಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:55 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ 102.9 ಎಫ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:45 ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಆಯುಷ್ವಾಣಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರಾಷ್ಟೀಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
6: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
7: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
6: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
8: So if you want to make more export,
9: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
8: 6% so it comes to 10%.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
10: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
11: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
12: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
11: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
13: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, साथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई।
11: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भारतीय स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency, aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance, claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said at the same time, the government declared Shehzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act. Mr. Shah also launched a

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली शिशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में, और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश ही अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली शिशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 83.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली शिशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर, डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह, भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में, 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने

0: अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला, लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से, 8:21.67 समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के सातवें स्थान पर रहे, तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारतीय चौकली चौथे, 100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी, तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुँचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हाँ, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट आउट का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी, जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट आउट में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन दबाव के बीच 5 शूट आउट तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत की पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ हलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: गोइंग टू द कुराश अरेना वेयर पिंकी बलहारा हैज सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स अंडर 78 किलोग्राम कैटेगरी। पिंकी वॉज इन एक्शन इन द सेमी फाइनल टुडे अगेंस्ट साउथ कोरियाज मूसो 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semifinals and securing the medal. Significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash Arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल तीन ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी तीन मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। जी हाँ, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक तीन मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर

0: भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य और कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग प्री क्वार्टर फाइनल एनकाउंटर। इट वॉज एन एक्सट्रीमली क्लोज कॉन्टेस्ट विद गणेश एजिंग पास साहिल 149-148, विनिंग द ऑल इंडियन बैटल बाय जस्ट 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot-off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और सी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच

0: देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में तीन बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सेपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट। The deciding third set went right down to the wire, but Japan edged it 15-13 to seal the victory. So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासू ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत, दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6थे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा। चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver.

0: होंगे और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक, एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: silver at the previous games. Athlete Gulbir Singh won his second silver medal at the ongoing games, finishing runner-up in the men's 1,500-meter event. In shooting, Isha Singh won the silver medal in the women's 25-meter pistol individual event. Paril Chaudhary won her second bronze medal at the games, clocking 15 minutes 14.61 seconds in the women's 5,000-meter event. Athlete Vidya Ramraj bagged bronze in the women's 400-meter hurdles, setting a new national record in the process. India also secured a bronze medal in Kurash, with Pinky Balhara finishing third in the women's under 78-kilogram category. In women's boxing, Olympic medalist Lavlina Borgohain and Priya Ghangas have assured India of two more medals. India currently 12th in the Asian Games medal standings. And that is the end of this news bulletin.
1: ಇದುವರೆಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ಕನ್ನಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎಫ್ಎಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಿಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:53 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ತೇಜ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭರಾತ್ರಿ.
2: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also take calls from you, our listeners, on market related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Manoj Pathak.
3: Namaskar, Market Mantra ki Tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं. आज सोमवार है और आज के दिन आप हमारे साथ बातचीत करते हैं. आज भी हमसे आप पूछ सकते हैं कारोबार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं. हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
4: जी नमस्कार, धन्यवाद.
3: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी.
2: थैंक यू मनोज. Benchmark domestic indices declined sharply. Sensex tanks over 1100 points. Nifty settles below 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year. And global crude oil prices surge around 3.5%.
3: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई भारी गिरावट. सेंसेक्स 1100 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 22,800 के नीचे बंद हुआ. देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अगस्त में 8% बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम लगभग 3.5% उछले.

0: And before we take a look at the top story, let's. There's this important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला लेकिन पहले खबरों से पहले आपको लिए चलते हैं गुड़गांव हमारे साथ फोन लाइन पर है मनीष मनीष जी स्वागत आपका सवाल पूछिए
2: नमस्कार सर और मार्केट मंत्रा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बहुत ही गरिमापूर्वक और बहुत ही गंभीरता से आप ये प्रोग्राम चलाते हैं और किसी भी सस्ती या किसी नॉन सीरियस न्यूज से आप लोग बचते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सवाल सर ये है कि जैसे मैं एमएफ में एक्सपोजर है मेरा म्यूचुअल फंड्स में जिसमें लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप और थोड़ा सा डेट फंड्स में भी है अभी काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं अपनी एसआईपी रोक दूं क्योंकि मार्केट ठीक होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है हालांकि मेरा मानना यह था कि जब मार्केट गिरी होती है एसआईपी में तभी फायदा होता है क्योंकि कम एनएवी पे आपको ज्यादा यूनिट मिलती है तो जब मार्केट उठेगी तो हो जाएगा लेकिन सर ये काफी टाइम हो गया है और अब आपको क्या लगता है कि क्या मुझे अपनी एसआईपी रोककर उसको एफडी की तरफ या डेट फंड की तरफ किस तरफ मुझको डाइवर्ट करना चाहिए सर थैंक यू
3: मनीष जी देखिए आपका ये बहुत अच्छा फैसला है कि आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है लार्ज में भी है स्मॉल में भी है मिड में भी है फ्लेक्सी में भी है और आपका डेट फंड में भी है तो ये बहुत अच्छा आपका फैसला है और ये भी जो आपकी सोच है कि जब बाजार गिरता है तो उससे हमें फायदा ही होगा यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप एक्सपोजर जो है वो इक्विटी से कम करके आप डेट फंड में जा सकते हैं और आपने खुद ही कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट फंड तो मुझे लगता है कि डेट फंड का विकल्प आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि वहां पर एक निश्चित दौर पे जो है वो आपको ब्याज मिलनी है तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां जाएं आप जो आपका मान लीजिए कि 100 रुपये में अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर 70 रुपये आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है इन चारों को मिला देकर फ्लेक्सी स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप में और 30% अगर आपने डेट में लगा रखा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यानी कि 40 कर दीजिए या 45 कर दीजिए ये आपके लिए एक लंबे समय का बेहतर विकल्प होगा एसआईपी बंद मत करिए ये जो है वो चल रहा है चलने दीजिए हो सकता है कहते हैं कि गिरावट आती है बिल्कुल गिरावट आई है बहुत जैसे कहा जाए कि हर दिन निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो गिरावट का एक रिकॉर्ड ही बना रहे हैं पहले हमने तेजी की बात करी थी कुछ समय पहले अब हम लोग गिरावट की बात कर रहे हैं तो जैसे शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं कि एक आपका एक रेसिस्टेंस लेवल होता है और एक सपोर्ट लेवल जो होता है अब यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी हद तक टूटता हुआ नजर आ रहा है और वो कहाँ तक जाएगा ईमानदारी से बताएं तो आज के दिन में कहना बहुत मुश्किल है बाजार में एक और गिरावट की आशंका जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है तो मेरी राय ये है कि आप बने रहें
0: जी एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल सुदीप्ता इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम कोलकाता सुदीप्ता वेलकम टू मार्केट मंत्रा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
4: नमस्ते मैम जी मेरा क्वेश्चन जो चीज में
0: सुदीप तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आप दोबारा अपना सवाल प्लीज रिपीट करें
4: अगर कोई शुरू करना चाहता
1: तो सुदीप तो हमें लगता है आपकी फोन लाइन में और हमारी फोन लाइन में सीधा संवाद संपर्क नहीं हो पा रहा है आपकी आवाज कटकट के आ रही है आप एक बार दोबारा फिर से प्रयास करें आइए बात चल रही है गिरावट की वाकई शेयर बाजार गिरावट के दौर से गुजर रहा है और आज भी अच्छी खासी गिरावट हुई है बंदड़ी बाजार पर हावी नजर आ रहे हैं आज के कारोबार में प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22,780 दर्ज हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो मिड कैप 100 इंडेक्स 1.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.8% नुकसान के साथ बंद हुआ यानी कुल मिलाकर लगभग अप्रैल के स्तर पर हम फिर से लौट आए हैं बाजार में आज शुरुआत से ही कमजोरी बनी रही और लगातार पूरे सत्र में बिकवाल हावी रहे दरअसल पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम ऊपर जाने बॉन्ड यील्ड में तेजी आने और विदेशी फंड द्वारा पूंजी निकालने का क्रम जारी रहा, जिससे सभी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस डिक्लाइंड शार्पली बाय ओवर 1.5% टुडे। द सेंसेक्स प्लंज्ड 1,124 पॉइंट्स टू क्लोज एट 72,772। द निफ्टी शेड 360 पॉइंट्स टू सेटल एट 22,780। In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index tumbled 1.6%, while the small-cap 100 index tanked 1.8%. Markets opened with gap down this morning and continued their downward trajectory throughout the session as rising crude oil prices, escalating tensions in West Asia, surging global bond yields and persistent foreign fund outflows weighed heavily on investor sentiment.
1: सेंसेक्स पैक पर आज ध्यान दें तो इकलौती एक ही

0: shares of 3,218 companies declined, shares of 1,271 companies advanced, while shares of 228 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 17 पैसे कमजोर हुआ 95 रुपए 99 पैसे के स्तर पर बंद हुआ
0: एंड लेट्स टेक आवर नेक्स्ट कॉल अमित झा इज ऑनलाइन विद अस ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली अमित वेलकम टू मार्केट मंत्रा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
1: अमित जी आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लगता है आपका धैर्य चूक गया और आप हमारा संपर्क टूट चुका है बहरहाल आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले प्रतिक्रिया हम लेना चाहें अपने विशेषज्ञ शिशिर जी से आज की गिरावट के पीछे मुख्य कारक क्या रहे शिशिर
2: अब मुझे लगता है अमित शायद जुड़ नहीं पाए हैं उनकी जगह हमारे पास एक नए कॉलर हैं इनसे पहले बात कर ले फिर मैं आपके
0: जी सो नाउ वी हैव ऑनलाइन विद अस कांता इज कॉलिंग अस फ्रॉम गुरुग्राम कांता वेलकम टू मार्केट मंत्रा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
3: जी नमस्ते
0: जी नमस्ते सवाल पूछे
3: मेरा सवाल ये है कि जो पीपीएफ का खाता केनरा बैंक में मैंने खोला है पीपीएफ का खाता
0: जी जी
3: तो मैं ये संतुष्ट करना चाहती थी 15 साल के अंदर कोई जोखिम नहीं होगा मेरे पैसे में अगर बैंक को कुछ भी हो जाए तो
2: बिल्कुल नहीं कांता जी देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड चाहे बैंक में आप खोले या डाकघर में खोले ये पूरी तरीके से सरकार की ओर से प्रायोजित होता है यानी कि इसमें मूल और ब्याज की पूरी गारंटी सरकार की होती है तो बैंक अगर बंद भी हो जाए या बैंक में अगर किसी भी तरीके का नुकसान भी हो जाए तो वहाँ पर आपके पीपीएफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि जो भी आपका ब्याज बनता है 15 सालों पर जो मूल है आपका वो आपको पूरा मिलेगा
1: आइए चले मुंबई मुंबई से हमारे साथ हैं नियमित श्रोता रत्नाकर रत्नाकर जी स्वागत आपका सवाल पूछें
4: हेलो गुड इवनिंग सर
1: स्वागत आपका
4: मेरा सवाल है कि ये शेयर मार्केट का एक टर्मिनोलॉजी के बारे में मुझे जानना है
1: जी
4: वो है ओवरऑल एमटीएल टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बुक प्रॉफिट जब हमने शेयर सेल कर दिया तो वो पोर्टफोलियो से सेल हो गया लेकिन उसके बाद में भी जो प्रॉफिट दिखता है वो किधर एडजस्ट होता है ये मेरा सवाल है
2: देखिए रत्नाकर जी अगर आपने अपने कोई भी शेयर बेचे हैं और अगर वो आपके खरीद कीमत से ज़्यादा है तो आपका मुनाफा है जब आपने बेच दिया पूरी तरीके से उसके बाद उस शेयर में जो भी बदलाव हो रहा है उससे आपका कोई संबंध तो रह नहीं जाता है वो जो भी निवेशक उसमें हैं उनके लिए वो मुनाफे की बात होती है एक और बात आपको रत्नाकर जी ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि नोशनल प्रॉफिट यानी कि कई बार होता क्या है कि आप 100 से वो दाम बढ़ करके 120 पे आ जाते हैं 125 पे आ जाते हैं 130 पे आ जाते हैं आप कहते हैं कि ये 150 होगा तभी जा करके बेचेंगे
0: बिल्कुल
2: तो ये जो 150 है वो आपके लिए एक नेशनल प्रॉफिट है वो अगर हो सकता है कि वो पहुंच भी जाए हो सकता है नहीं भी पहुंचे आपकी जो लागत थी वो 100 रुपए की थी तो जहां तक मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जो सार था वो यही था कि हमने शेयर बेच दिया हमारा मुनाफा या हमारा जो भी घाटा है वो मेरे ऊपर है उसके बाद उस शेयर में क्या कुछ होता है जब आप उसमें शेयर धारक ही नहीं रहे तो उसके घाटे और मुनाफे से आपका संबंध नहीं रह जाता
0: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम जयपुर जितेंद्र वेलकम टू मार्केट मंत्रा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
5: नमस्कार हम लोग को अभी क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए क्योंकि मार्केट का काफी 3 से 2 साल से ऐसे ही चल रहा है तो निफ्टी 50 में हम लोग एसआईपी कर रहे थे और निफ्टी 50 के आईटी सेक्टर में हम लोग एसआईपी कर रहे थे लेकिन आईटी सेक्टर से थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन हमको विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करेगा आगे तो क्या हम करें अभी समझ नहीं आ रहा
2: जितेंद्र जी आपके विश्वास की ही जीत होगी और जहाँ तक हम लोगों ने ये भी दौर देखा कि जब एआई को लेकर के काफ़ी बड़ी बातें की जा रही थी उस दौर में आईटी पे थोड़े समय के लिए दबाव बना लेकिन उसके बाद आईटी शेयरों में बाउंस बैक हुआ आज भी अगर आप देखें तो कोई एक शेयर जो आज 30 शेयरों में कोई एक आगे आया है तो वो आपका आईटी सेक्टर ही है तो मुझे लगता है कि जब गिरावट का माहौल है उसमें निश्चित तौर पर आप जैसे निवेशक के लिए एक परेशानी और एक प्रश्न चिन्ह है दोनों चीज़ें हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप बने रहें जो आप कर रहे हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा करते रहें और मेरा ये भी मानना है कि जैसे उसको कहते हैं कि एक सुरक्षा भी आप बना लें कुछ पैसे जो आपने अपने लगाना चाहते हैं उसको यदि थोड़ा आप उसका विविधीकरण कर दें बैंक में या डाकघर की बचत योजना में लगा लें डाकघर की बचत योजनाएं बहुत बेहतरीन है क्योंकि उसमें मूल और ब्याज दोनों की

0: गारंटी जो है वो सरकार की होती है, तो उसमें आपको कम होने का खतरा नहीं है और आपके लिए वो एक सुरक्षा का भी काम करेगा। तो आप अगर इस तरीके से विविधीकरण कर लें तो जो आपका घाटा है, देखिए बाजार के घाटे को कोई पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए धैर्य ही एकमात्र चीज है, लेकिन अगर आप विविधीकरण करते हैं तो आप घाटे को कम कर सकते हैं।
1: आइए लौटे दिल्ली, दिल्ली से हमारे साथ हैं जगदीश। जगदीश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, जगदीश जोशी नांगली दिल्ली से।
1: जी स्वागत है आपका।
2: सर जो यूपीआई में 0.4 का जो 2000 प्लस की जो पेमेंट का है, तो मैं पर्सनली अपने लिए पूछता हूँ क्योंकि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ जिसके पास की 10 रुपए 20 रुपए किसी ने चिप्स लिया या बॉल पेन लिया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ दो बातें कि अगर कोई 10-10, 20-20 रुपए करके अगर 2000 रुपए इकट्ठे होते तब उसमें कटता है, एक मुश्त कोई करता है तो तब कटता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत छोटा काम है और एक दो कस्टमर ऐसे हैं जो मतलब 10-20 रुपए डेली ना देके वो मंथली 2500-3000 रुपए होता तो वो पेमेंट करते हैं, तो उसमें हमें मतलब कितना 3000 या 2500 रुपए तो हमें कितना उसमें हमारे खाते से कटेगा, ये मतलब छोटे दुकानदार के लिए तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा उस पर बर्डन पड़ेगा, तो आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी चाहता हूँ सर, धन्यवाद।
0: जगदीश जी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय में। देखिए आपके पास दो तरीके के ग्राहक हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि खाते में लिख लो, और एक है जो कि नियमित तौर पे आते हैं और जो भी आपसे खरीदते हैं उसका या तो नगद या यूपीआई के जरिए भुगतान कर देते हैं। आपने कहा आप एक छोटे व्यापारी हैं, अगर पूरे महीने के दौरान अगर आपके पास कुल यूपीआई के जरिए लेन देन में आपको 1 लाख रुपए से कम की आ रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास 2000 रुपए यानी कि 1999.99 रुपए तक अगर जो भुगतान कर रहा है वहां पर 1 रुपया भी उसका MDR नहीं लगेगा, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट हम जिसको कहते हैं, यदि वो 2000 के बाद महीने के अंत में जो खाते वाले आपके हैं और वो आकर के कहते हैं कि चलो हमारा खाता क्लियर कर दो और हम एक बार में आपको 2500 का भुगतान कर रहे हैं, वो यदि 2500 का भुगतान कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक शर्त ये याद रखनी है कि जो अगर 1 लाख रुपए से कम की आमदनी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी आमदनी है तो वहां पर आप 2000 के ऊपर का भुगतान जब अगर आप लेंगे तो 0.4% की दर से आपका MDR जो है वो कटेगा। तो इसमें बेहतर होगा कि खाते को 2000 रुपए तक आने ही ना दे और आप उसका नियमित तौर पर भुगतान लेते रहें। वैसे भी कहते हैं ना कि उधार प्रेम की कैंची है, तो ग्राहकों के साथ आपका प्रेम संबंध ना बिगड़े और आपके बचत और आपके खाते के ऊपर बोझ ना पड़े तो ये दो विकल्प अपना करके देखिए बेहतर है।
3: एंड ऑन दैट नोट लेट्स शेयर विद आवर लिसनर्स अ रिलेटेड स्टोरी। द सुप्रीम कोर्ट टुडे रिफ्यूज्ड टू स्टे द सेंटर्स डिसीजन टू इम्पोज मर्चेंट डिस्काउंट रेट और MDR ऑन स्पेसिफाइड पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शंस अबव 2000 रुपीज with the charges set to come into effect from the 15th of next month. A bench comprising Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana sought responses from the Centre, the Reserve Bank of India and other respondents, directing them to file their counter-affidavits within 4 weeks. The Apex Court observed that the issue is less legal and more technical. Appearing for the court, Additional Solicitor General, appearing for the Centre, Additional Solicitor General N. Venkataraman told the bench that 96% of the users of the payment gateway would remain exempt.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से देश में जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर सुधार के साथ 7.4% पर पहुंच गई, जबकि पहले 6.7% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में बिजली और गैस आपूर्ति में 12.3% की शानदार वृद्धि हुई है, जबकि IIP सूचकांक में सबसे अधिक भार रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9% की दर से हुआ है। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में भी 6.3% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि के दौरान खनन क्षेत्र में 5.6% की गिरावट आई है। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े कुल मिलाकर देश की जो औद्योगिक उत्पादन के अच्छे आंकड़े, इसे हम स्वीकार कर सकते हैं?
0: मनोज जी, इसके पहले आपका जो पहला प्रश्न था वो हम लोग
1: शेयर बाजार,
0: कांता जी का फोन आ गया था, तो आपने शेयर बाजार को लेकर के मौजूदा हाल पे जो आपने चर्चा करी थी, उसमें देखिए एक जो हमारे लिए

0: तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका में ब्याज दर जो है वो बढ़ रही है, जिसको तकनीकी भाषा में हम यील्ड भी कहते हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका काफी कर्ज ले रहा है, तो जो कर्ज ले रहा है उसके लिए वो ऊंची ब्याज देने को तैयार है। तो एक निवेशक के सामने एक विकल्प है कि वो ऊंची ब्याज वाले पे जाए या फिर हमारे यहाँ है। एक और महत्वपूर्ण घटना जो आज हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में आज काफी गिरावट थी, कि चीन में पहले अंडरवेट सिचुएशन था, अब वो बेंचमार्क न्यूट्रल हो गया है। अब आप कहेंगे बड़े दो तकनीकी शब्द आप लेकर के क्यों आ रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने चीन में 20 रुपया लगाने का फैसला किया था लेकिन आपको कंपनियों पे भरोसा नहीं था तो आपने 10 रुपये ही निवेश किए, यानी कि आप अंडरवेट हो गए। अब क्या हो रहा है कि बेंचमार्क न्यूट्रल होने के बजाय 20 का क्या 20 से ज्यादा निवेश करने की स्थिति में आ गए हैं, करने लगे हैं। तो अब पहले तो अमेरिका में पैसा लोग लगा रहे हैं, चीन में भी जा रहे हैं, तो हमारे लिए स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ हमारी जो कच्चे तेल की स्थिति है आप 104, 105 के ऊपर ही है, भाव चल रहा है, वो भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इन सब का नतीजा है कि बाजार में जो है वो गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, और हालात ये हैं कि अभी के समय में कुछ भी कहना ये जोखिम होगा कि बाजार किस स्थिति में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन को लेकर के, दो क्षेत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आपका विनिर्माण और दूसरा बिजली उत्पादन, लेकिन बिजली उत्पादन को लेकर के हमें थोड़ा सोचना होगा क्योंकि हमने देखा कि मौसमी बदलाव की वजह से बिजली की मांग काफी बढ़ी। तो अगर बिजली का उत्पादन दोहरे अंक में रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो 12% के ऊपर की बढ़ोतरी बिजली के उत्पादन में रही है, और विनिर्माण में जो बढ़ोतरी की दर रही वो 9% की दर रही। तो ये जो है वो त्योहारी मांग को देखते हुए निर्माण बढ़ा है, उसका असर आपको देखने को मिला है। तो ये 8% एक अच्छी बढ़ोतरी की दर है, और उम्मीद करनी चाहिए कि पहली तिमाही के जो आपके औद्योगिक विकास के आंकड़े हैं उसका असर दूसरी तिमाही की, माफ कीजिएगा, उसका असर जो है वो दूसरी तिमाही के विकास के आंकड़े जो कि 30 नवंबर को जारी होंगे उसमें देखने को मिलेगा।
1: जी, and on that note, let's take the next call from Delhi. Shankar is online with us. Shankar, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Hello, Shankar. If you can hear us, please ask your question. Looks like he's not, we have lost contact with Shankar. So let's move on to the next story. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE high-level joint task force on investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. The Commerce and Industry Ministry said that in a statement that these issues are important as they have the potential to make bilateral trade and investment more efficient, accessible and resilient. The areas where two-way investment flows can be enhanced include energy, industry, logistics, infrastructure, technology and artificial intelligence, space, food security, artificial innovation and the startup ecosystem.
2: बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, बड़ी ही महत्वपूर्ण मार्के की बात है। लोकल करेंसी यानी स्थानीय मुद्रा में जो बातचीत कारोबार का आह्वान हम कर रहे हैं उस दिशा में, साथ ही संदेश आदान प्रदान और पेमेंट इंटीग्रेशन की बात चली। कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही है खबर और किस रूप में ये लागू होने की संभावना है आने वाले दिन?
0: देखिए, इसका मतलब है कि आपकी निर्भरता जो है वो डॉलर पे थोड़ी कम होगी और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी।
1: Jay, and let's take the next call now. Kripa Shankar is online with us from Delhi. Mr. Kripa Shankar, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: धन्यवाद। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप समझा रहे थे कि 2500 अंक की पेमेंट आपके पास आती है तो आप इसको पूरी ना लें, अगर हम उसको 1000 और 1500 रुपए के हिसाब से लें, 1500 एक लें, 1000 एक लें, तो तब भी चलेगा, और चाहे हमारा लाख से नीचे ही रहता है उस मुताबिक भी ठीक रहेगा। और जैसे हम जॉब करते हैं तो हमारा जो सेट है वो हमारे अकाउंट में UPI में किसी की पेमेंट आ जाती है 5000, 7000, 10000, छोटी मोटी पेमेंट हमारे में डाल देते, तो हमें डलवानी चाहिए या नहीं डलवानी चाहिए, कि या फिर इसके अंदर भी हमारा तो सिर्फ एक सैलरी है, हमें तो 30000 रुपये मिल जाते हैं मंथली, तो हमारे पे क्या कुछ, हम तो दुकानदार नहीं है, तो इस पे क्या आप
0: पहली वाली जो परिस्थिति है जो आपने कहा कि हम उसको 2500 को दो हिस्सों में बांटते, 1000 रुपए का और 1500 रुपए का, जाहिर सी बात है उसमें आपका कोई लगेगा नहीं। दूसरी बात यह कि

0: 1 लाख रुपए के नीचे के जो व्यापारी यानी कि छोटे व्यापारी जो हैं उनके वो इस दायरे में नहीं है। तीसरी बात है कि व्यक्ति से व्यक्ति को मिलना, वहां पर आपके लिए MDR नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको एक व्यक्ति के तौर पर आपको भुगतान कर रहा है, आपने कहा कि आप एक व्यापारी नहीं है, कारोबारी नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
1: आइए आगे बढ़ें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU की 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित करने के बाद आज देश भर में बैंक खुले रहे। भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद ये निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, प्रस्तावित हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए IBA और 7 बैंक यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था UFBU के बीच कल रात हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। इससे पहले यूनियनों ने मुख्य रूप से 2 मांगों, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लागू करने और प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने के लिए 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल की घोषणा की थी। और अब चले एशियाई शेयर बाजार यानी दुनिया के 2 प्रमुख महादेश से हम कुछ चुने हुए बाजारों की खबर आपको देते हैं। एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में 2.7% की गिरावट आज बिकवाली के दबाव में हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक भी 0.7% नुकसान के साथ बंद हुआ।
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rebounded today after US President Donald Trump rejected an Iranian peace proposal over the weekend aimed at resolving the conflict and reopening the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.5% higher at $108 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 3.6% up at $95.72 per barrel at the time of writing this report. A very brief comment, Shishir, because I was reading somewhere that one of the international financial service firms actually has said that it has lost visibility on the direction of oil prices for the first time since Iran war. There is no longer a clear baseline scenario for the markets.
0: Very true. At this moment, when today you are listening this one, yeah. I mean that there is going to be an agreement. Tomorrow there is no agreement. So this weekend was very critical,
2: yeah.
0: And did not happen. Anything did not take place. So we are going to see only the southward movement, not the northward movement. I'm sorry, northward movement, not the southward.
2: Not southward. The southward. Yes. Yeah.
1: हमारे साथ श्रोता अभी भी फोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं, लेकिन हम अहमद अली जी विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और अन्य श्रोताओं को भी कि हम अब समय अभाव में आपके प्रश्न को नहीं ले सकते। भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 2.7% घटकर 1,47,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 4% घटकर 2,23,053 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से शिशिर के सोने में और चांदी में दोनों में निवेश के लिए अभी का जो स्तर है वह कैसा दिख रहा है।
0: डॉलर देखिए, डॉलर जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा सोना कमजोर होगा, तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं 1.80 से हम 1.47 पे आ गए हैं तो थोड़ा सा एक मौका बनता है सोने में आप पैसा लगा।
1: यदि दीर्घावधि में देखें तो सोना सोने के वैश्विक
0: स्तर पर डॉलर जब भी मजबूत होगा आपका सोना कमजोर होगा।
1: यह है विशेषज्ञ की सलाह कि डॉलर मजबूत यानी सोने में नरमी, सोने की चमक फीकी होगी और आपके निवेश के लिए अवसर बन जाएगा। और आप श्रोताओं ने जिस उत्साह के साथ भाग लिया इसलिए आपकी ओर से हम शिशिर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: And before we close, look at the headlines once again. Benchmark domestic indices decline sharply. Sensex tanks over 1,100 points. Nifty settles below 22,800. India's industrial output grows by 8% in August this year. And global crude oil prices surge around 3.5%. That's all we have time for in this edition of the program. Till we meet again, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन मीत आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म गंगा जमुना से लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

इस गीत के साथ ही गीत मेरे मन मीत यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने DDPA को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। म्यांमा की सेना ने ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। अराकान आर्मी के मुताबिक ये हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। कल दोपहर के समय एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास 2 बम गिराए, जिससे सामान बेचने वालों, खरीदारों और पैदल चलने वालों समेत 33 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेता को बधाई दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ। रात की नरमी में खुले हैं पुराने फिल्मी गीत, यादों की खुशबू और आपके अपनेपन का एहसास। तो आइए इस सुहानी रात को संगीत के नाम करें और सुने कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जो वक्त गुजर जाने के बाद भी दिल में अपनी जगह बनाए रखते हैं।

प्रेम पर्वत फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। सुना है ये मॉनसून की आखिरी बारिश थी, अगले बरस इसका इंतजार तो रहेगा ही। बारिश की बूंदों से जुड़ी यादें भला इतनी आसानी से कहां जाती हैं, और देखिए इस बार की बारिश ने मौसम की ऐसी करवट बदली कि सितंबर के आखिरी दिनों में ही दिसंबर की ठंड का एहसास होने लगा। दिल्ली में 27 सितंबर को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक पहुंच गया। तो मौसम के इस बदलते मिजाज के साथ आइए आज की निशिगंधा में कुछ ऐसे गीत सुने जिनमें कभी बारिश की नमी है, कभी सर्द हवाओं की ठंडक और कभी बीती हुई शामों की मीठी याद।

ना खुदा फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और दिन मुकेश की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। बताइए तो सही, आपकी इन पलकों में आखिर छुपा क्या है? कोई ख्वाब, कोई राज, या फिर सितारों सी चमकती हुई खूबसूरत बात? आंखों की तो यही खूबी है, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं। और जब इन्हीं आंखों की तारीफ में कोई नगमा सजे तो रात और भी हसीन हो जाती है।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गजल सुनी आशा भोसले की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 34 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशी

जमीन आसमान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। अगर तुम मेरे हमराही ना होते तो शायद ये समा भी इतना खूबसूरत ना होता, ये रास्ते इतने हसीन ना लगते और कुछ भी यहाँ ना होता। किसी अपने का साथ ही तो हर मौसम में एक मिठास खोल देता है, हर सफर में एक खूबसूरत कहानी बन जाती है।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले की आवाज में। बप्पी लाहिड़ी ने संगीत दिया और इस गीत को लिखा इंदीवर ने। मोहब्बत में शिकवे भी होते हैं, रूठना मनाना भी, कभी दिल दुखता है, कभी कोई सितम भी सहना पड़ता है, मगर इन सब के बीच दिल की एक ही ख्वाहिश रहती है, तुम चाहे जितनी शिकायतें करो, चाहे कोई सितम कर लो, बस अपना प्यार कभी कम मत करना।

तुम्हारी कसम फिल्म से आपने ये गाना सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 36 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति

0: और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्ययोजना डीडीपीए को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और इथियोपिया ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक की। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास, चिकित्सा सहयोग, शांति स्थापना और रक्षा उद्योग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए कल 3 टन क्षय रोग रोधी दवाओं की खेप भेजी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत श्रीलंका की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पतालों सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, विशेष नैदानिक सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पतालों में चल रही और आगामी परियोजनाओं की योजना रोगी केंद्रित और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ बनाई जानी चाहिए। भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के वाराणसी डिवीजन के 614 किलोमीटर से अधिक के मार्ग पर कवच 4.0 परियोजना के लिए 223 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजना वाराणसी डिवीजन के चिन्हित शेष खंडों में कवच 4.0 कवरेज का विस्तार करेगी, जिससे ट्रेन संचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the Conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating Conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations

वक्त हुआ है 11:00 वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 8 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूँ राखी आपके साथ।

आंखें फिल्म से आपने ये प्यारा सा गाना सुना शमशाद बेगम और मुकेश की आवाज में। इसे लिखा भरत व्यास ने और संगीत दिया मदन मोहन ने।

0: अलबेला फिल्म का गाना आपने सुना सी रामचंद्र की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। इस गीत की इन पंक्तियों में प्यार के साथ जुड़ी शरारत भी है और एक हल्की सी चेतावनी भी। इश्क की राह पर कदम रखिए तो दिल के साथ साथ होश संभाल कर चलना भी जरूरी है। मोहब्बत अगर हद से गुजर जाए तो आशिक अपना दिल ही नहीं, कभी कभी सब कुछ दांव पर लगा बैठता है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

पतंगा फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम और सी रामचंद्र की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। दूर देश गए पिया की याद जब दिल को सताने लगे तो दूरियां भी जैसे आवाज बनकर कानों तक पहुंचती है। एक तरफ इंतजार की बेचैनी, दूसरी तरफ टेलीफोन पर मिलने वाली पिया की आवाज, और इन दोनों के बीच तड़पता हुआ दिल, यही तो है उस दौर के गीतों की खूबसूरती।

मनमौजी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। ऐसी श्रीमती जी चाहिए जो घर को संभाले, पति का ख्याल रखे और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें। अभी गुजारिश कितनी मासूम है और कितनी शरारती, इसका फैसला आप खुद कीजिए।

अल हिलाल फिल्म से आपने ये कव्वाली सुनी इस्माइल आजाद की आवाज में। इसका संगीत दिया बुल्लो सीरानी ने और इसको लिखा शिवान रिजवी ने।

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है

उड़न खटोला फिल्म से आपने गीत सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। कभी कभी कोई राहगीर सिर्फ रास्तों से नहीं गुजरता, अपने साथ किसी की याद, किसी का सलाम और मोहब्बत का एक पैगाम भी ले जाता है।

भाभी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। टाई लग गई, अंदाज बदल गया तो जनाब खुद को समझने लगे हीरो। लेकिन असली इम्तिहान तो किताबों के सामने होता है। यहाँ स्टाइल तो पूरा है मगर पढ़ाई लिखाई में नंबर जरा कम ही नजर आ रहे हैं।

वक्त फिल्म से आपने ये गीत सुना, मन्ना डे की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। मोहब्बत की खूबसूरती शायद यही है कि वक्त गुजरता रहता है, उम्र ढलती रहती है, लेकिन किसी अपने को देखकर दिल की धड़कनों पर उम्र का कोई असर नहीं होता। वही अपनापन, वही तारीफ और वही प्यार भरा अंदाज़।

रुस्तम सोहराब फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया सज्जाद ने। कभी कभी किसी की याद यूं दिल को छू जाती है कि बीते हुए लम्हे फिर से आंखों के सामने नजर आते हैं। दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्चे रिश्तों की याद दिल में हमेशा बनी रहती है।

बहार फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:57 और ठीक 55 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के सात स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय

मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने DDPA को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ. सिंह ने कल नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन ने दोनों देशों के लिए सरकारी संस्थानों और स्थापित एजेंसियों से परे सहयोग का विस्तार करने की नई संभावनाएं पैदा की हैं। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। भारत ने श्रीलंका की पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मदद के लिए कोलंबो में लगभग 3 टन टीवी रोधी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन दवाओं को भेजने की जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और रफी की आवाज़ में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

एंकर जय किशन ने। झूमता मौसम मस्त महीना और ऐसे खुशनुमा माहौल में अगर चांद सी गोरी एक हसीना नजर आ जाए तो दिल का उसके पीछे पीछे चल पड़ना कोई हैरत की बात नहीं। इस गीत में प्यार की वही पहली हलचल है, आंखों की वही शरारत है और दिल के चुरा लिए जाने की वही मीठी शिकायत। याला याला दिल ले गई।

बहारों के सपने फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, और जरा बच के क्योंकि तेरी नजर का ये तीर कहीं दिल को घायल ना कर दे। कितनी शरारत है इन पंक्तियों में, गोरी की उड़ती चुनरी, उसकी चंचल अदाएं और उस पर नजर की ऐसी कशिश जो सामने वाले को बेचैन कर दे।

वक्त हुआ है 2:31 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, रात सुरमई है, हवाओं में एक ठहराव है और इस खाम

जूल थी फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। रात की तन्हाई है, दीयों की रोशनी भी अब बुझ चुकी है, ऐसे में दिल चाहता है कि कोई अपना पास आकर चुपके से दिल की बातें कह जाए। खामोशी के इस माहौल में कुछ अल्फाज कानों तक पहुंचे और रात की ये तन्हाई थोड़ी सी कम हो जाए।

0: जरा ओड़ो अरे मानो कहा अब तुम हो जवा मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तीन देवियां फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्यार में जब नटखटपन खुल जाए तो बातचीत भी गीत बन जाती है। कभी घूंघट की बात, कभी जवानी पर शरारती ताना और कभी रूठने मनाने का सिलसिला, इसी प्यारी सी नोकझोंक में मोहब्बत का रंग और भी गहरा हो जाता है।

ब्रह्मचारी फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर और रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मोहब्बत जब दिल से निकलकर आंखों और अंदाज में उतर आए तो उसे भला कितनी देर छुपाया जा सकता है। दो दिलों के बीच की ये कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही बल्कि हर जुबान पर इसकी चर्चा है और हर किसी को इसकी खबर हो गई है।

गुमनाम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 22 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

भूत बंगला फिल्म का गाना आपने सुना मन्ना डे की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा

0: के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 60 सदस्यीय दल कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन के लिए रवाना हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अंतर्गत संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों बलों के बीच समन्वय को बढ़ाना और संयुक्त क्षमता को मजबूत करना है। म्यांमार की सेना ने एक ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हैं। अराकान आर्मी के मुताबिक ये हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उप रक्षा मंत्री मागदेलेना सोबकोवियाक जारनेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में संयुक्त कार्य योजना 2024 से 2028 को लागू करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत और पोलैंड के बीच संस्थागत रक्षा और रक्षा उद्योग संबंधी सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। भारत ने नई दिल्ली में कल हुई भारत फिजी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण में फिजी और प्रशांत द्वीप देशों के महत्व को दोहराया है। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और फिजी के रक्षा तथा पूर्व सैनिक मामलों के स्थायी सचिव मेसन स्मिथ ने की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shahzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade and local currency integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai yesterday. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said The two countries aim to take bilateral trade to $200 billion

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल को सुन रहे हैं आप। रात के 3:10 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही। मैं हूं आपके साथ पंकज। तो शुरुआत करते हैं दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं यादों की बारात मूवी से। इस गाने की शुरुआत करते हैं और फिर मुलाकात होती है।

ये वो गाने हैं जिन्हें जितना सुनो उतना कम है। 1978 की फिल्म घर से ये गाना था, गुलजार के बोल और आर डी बर्मन का म्यूजिक। इस प्यारी सी जिंदगी की ये आधी रात के हसीन पलों को मैं और आप इन पुराने ड्यूट्स गानों के साथ जिएंगे। मैं हूं पंकज, आपके साथ हमराही शो में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो भुला दीजिए हर परेशानी और खो जाइए इस रात की हल्की ठंडी हवाओं में। दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं और ये सॉफ्ट गाना वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द मूवी आंगन की गली।

मौसम फिल्म का गाना भूपिंदर और लता जी की आवाज, मदन मोहन की म्यूजिक कंपोजिशन और गुलजार के बोल। इस गाने में लाइन आती है कि जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर, बस आज से यानी 3 दिन बाद अक्टूबर लगेगा और फिर हल्की ठंड फील होगी। हालांकि दिल्ली में अभी जो इस टाइम है हल्की ठंड फील होती है, इस टाइम तो हो ही रही है, और एक अर्ली मॉर्निंग जो होती है ठंड उस टाइम लगता है कि हाँ भाई अब सर्दियाँ आने वाली हैं। और सर्दियों में अपने पसंदीदा इंसान का अगर साथ मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है वो किसी वरदान से कम नहीं होता। हमराही सुन रहे हैं आप मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और बहुत खुश नसीबी से अपनी पसंद का हमराही मिलता है। सच मानिए उसके संग जी भर के जीना चाहिए। अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो ऐसे मोमेंट खोने नहीं चाहिए। मुझे लगता है ऐसे मौसम भी शायद स्पेशली प्यार करने वालों के लिए तो होते ही है। खैर अभी आपके लिए जावाज मूवी का गाना किशोर दा और सपना की आवाज़ में है।

चश्मे बदूर मूवी से ये वाला गाना आपने सुना। जब ये गाना चल रहा था तो मैं एक बात सोच रहा था कि जब सामने से कोई इंसान आपको प्रेम और रिश्ते के लिए ऑफर देना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिश्तों को स्वीकार करना चाहिए। आज के समय में कोई अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो लोग या तो अवॉइड कर देते हैं या फिर तो कई बार लोग सोचते हैं कि छोड़ो अब इसको क्या बोलें, या कई लोग डर जाते हैं। और आप पता है, हर दिल में ये आरजू रहती है कि कोई इन्हें टूट कर चाहे और प्यार करे, और वही जो है प्यार कभी भी किसी हाल में कम ना हो। और कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ सामने वाला ही नहीं, आप भी अपनी तरफ से प्यार का हाथ बढ़ाएं।

अपने पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक होना जो है वो मज़ेदार है, लेकिन कभी कभी बताए मजाक में कुछ बातें जो है वो मन खराब करती हैं, और ऐसे में ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाले ने आज दिल बेशक दुखाया हो, लेकिन इसी इंसान ने हमें प्यार भी तो किया है। छोटे मोटे समझौते करने चाहिए क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं। खैर, अब अगले घंटे सुबह 4:10 पर मैं आपसे शो में दूसरे शो में मिलूंगा जिसका नाम है अरुणिमा, लेकिन अभी हमराही शो का ये लास्ट गाना आप सुनिए, इसका मजा लीजिए, और फिर सुबह 4 बारी बारी से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। तो FM गोल्ड सुनते रहिए मेरे यानी पंकज के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ा

0: हवा मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनमें किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे तथा G20 साझेदारों के साथ भारत का जुड़ाव और प्रगाढ़ होगा। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the Conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network, including involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics, were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shehzad Bhatti Network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai yesterday. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said, India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said, the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
2: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the 7th largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
1: Meanwhile, Mr. Goyal will be on a visit to the United States of America from today till 5th of next month. During the visit,

सुबह के 4:10 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब आप सुनेंगे हर रोज की तरह कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं पंकज आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं इस गाने से और इन दो गानों के बाद आपसे मैं फिर मिलता हूं और किशोरदा की आवाज में कटी पतंग फिल्म से इस गाने के साथ।

जिंदगी चलने का नाम है और ऐसे ही मजे से चलती रहेगी। अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और लाइफ में पीछे मुड़कर देखो ना तो लगता है कि जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ और आगे भी अच्छा ही होगा, बस हम अपने कर्म अच्छे और सुंदर बनाए रखें। दो गानों के बाद आपसे मैं फिर मिलता हूँ और इससे हल्की ठंडी 29 सितंबर की छोटी वाली सुबह की आपको गुड मॉर्निंग। और अभी किशोरदा की आवाज में दोस्त मूवी का ये गाना है, 1974 में रिलीज हुई इस मूवी का गाना, वन ऑफ माई फेवरेट गाना है ये और बहुत अच्छा गाना है। इसको आप एक्चुअली में फील करेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, फिल्म भी बहुत अच्छी है, मौका मिले तो जरूर देखना।

सुबह के 4:28 पर लता जी की आवाज में अगर ये वाला गाना सुनने को मिल जाए तो फिर दिन की शुरुआत अच्छी होनी ही है। लता जी की आवाज थी रजनीगंधा मूवी के नाम, सलील चौधरी का म्यूजिक। हम कई बार ना किसी सिचुएशन में जो है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि ये आपने भी फील किया होगा कि घबराने से जो है काम और ज्यादा बिगड़ता है। शांत रहकर परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूँ पंकज आपके साथ।

साथ। शो का नाम है अरुणिमा। देखिए, स्थाई जो है दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो होना है ना वो निश्चित होगा और हो रहा है। हमारा किया हुआ कर्म भी तो कई बार हमें सफलता नहीं देता। अब जरूरी थोड़ी कि आप घर से बाहर निकले एक काम को पूरा करने के लिए और वो काम पूरा हो जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई चीजें अपना टाइम लेती ही हैं। बस हमें इतना करना है कि हम अपना बेस्ट दें और आगे बढ़ें, यही हमारा कर्तव्य है।

कई लोगों ने इस गाने का जो है रिमिक्स वर्जन निकाले, मतलब अपनी आवाज़ में भी गाए, और वो गाने तो अच्छे थे लेकिन जो ओरिजिनल की बात होती है वो तो होता ही ओरिजिनल है, और सच में बहुत अच्छा गाना है। मैंने तो ये मूवी देखी है, माला सिन्हा जी हैं इस मूवी में, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। कहते हैं कि रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए और न जाने कब कौन सी प्रार्थना जो है वो सुन ली जाए, लेकिन हमारी मांग और नीयत वो दोनों साफ और पवित्र हों। मैं हूँ पंकज आपके साथ, आप सुन रहे हैं अरुणिमा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और इसलिए हम किसी का बुरा ना सोचें ना करें, क्योंकि हमारी कोशिश इतनी रहनी चाहिए कि हम सबका भला करें, हित करें और आशीर्वाद से ना अपनी झोलियाँ भरें, क्योंकि ज़िंदगी में जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ दुआएँ ज़रूर काम आती हैं। अभी के लिए आंचल फिल्म से ये गाना लता जी के मेलोडियस आवाज़ में। अगर आपको अभी भी ऊँगने में ऐसा लग रहा है, मतलब अभी मैं नहीं उठ रहा हूँ, तो लता जी की आवाज़ आप ये सुनेंगे ये वाला गाना, तो आपको सच में मन करेगा कि चलो उठ जाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। सच में बहुत अच्छा गाना है ये।

कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारा मन जो है बिल्कुल वैराग्य से भर जाता है, सब कुछ फिजूल सा लगता है, लेकिन पता है इस संसार की माया जो है इंसान को हर बार नाच नचाती है। डिटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी है और हद से ज़्यादा मोह जो है वो बहुत नुकसानदायी होता है। और हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस समय किसी के प्यार में हैं या बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट है, इवन हमने भी उस चीज़ को फेस किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस ये संसार की चीज़ों का हम मजा लें। और याद रखें कि पानी नाव के नीचे हो तो अच्छा, लेकिन पानी अगर नाव के अंदर आ जाए तो मुश्किल। खैर, अगले घंटे अगले शो भोर सुहानी शो में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलूंगा 5:10 पर। अभी अरुणिमा में बाकी के गाने सुनिए और फिर 5 बजे से बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। और अभी के लिए संबंध मूवी का मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा, समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर बुधवार तक चलेंगे। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाएंगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ

के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबतोर के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। सुबह के 5:10 और 11 सेकंड हुए हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं हूं पंकज आपके साथ। तो इस शो की शुरुआत करते हैं दो गानों के साथ और शुरुआत होती है चांदनी मूवी के इस सॉन्ग से। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। आप ऐसे ही गानों का मजा उठाइए। गुड मॉर्निंग।

के लिरिक्स और मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना था एसपी बालसुब्रमण्यम और लता जी की आवाज में। और मौसम जो है वो हल्की ठंड का आ रहा है और अभी भी मौसम सच में बाहर बहुत अच्छा है। मैं स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ, सच में अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी तो खैर दिन ही नहीं हुआ, रात ही जैसा है, लेकिन ये रात नहीं है, सुबह के